0: चाय करें
1: चाय चाय
0: चाय की चाय
2: नाश्ता ग्राम नाश्ता ग्राम
3: चाय चाय चाय वाली चाय चाय चाय चाय वाली चाय ग्राम चाय चाय ग्राम चाय
4: We are occupying the bodies of Earth people.